साहिब जी हर जुग जुग भक्त पाया पैज रखदा आया राम राजे हर नाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकारियां ननका पिट दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेवया हंत लै छुड़ाया श्लोक महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख दारू सुख रोग पया जा सुख धाम ना हुई तू करता करना मैं नाही जाहू करी ना हुई बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाए लग

न चुके भोग गुण एहो होर नाही कोए ना को न को होए जेवड़े आप तेवड़ तेरी दात जिंदन करके कीती रात कसम सारे ते कम जात नानक नावे बात सुनात राह गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रगास।

जो सतगुर सन संगत नहीं आए त्रिक जीवे त्रिक जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास रागु जी माला पंजवा काहे रे मन चित्त उद्दम जा हर हर जीव परया

से जिन से व्या जिन से व्या मेरा हर जी ते हरा रूस मसी से धन जिन अर त्याया जी जन नानक तिन मर जासी।

उत्तरे सगल सूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर।

जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई आय जिह जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नाउने दयावे ताए। सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय।

बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि भाई साहब सरजीत सिंह की लाडी भी आज स्पेशल देखो ये उस्ताद जी दे बजे हुए सारे आ रहे ने। एक प्रेम जेड़ा एडे महान कीर्तनी है जेडे पंथ विच इन्ना नाम ते असी तो इन्हें सामने गाने भी घबराते हैं। बहुत कृपा महाराज जी पर स्पेशल देखो ये फ्री मोड की संगत का भी प्रताप है कि खिचे आए इस मल्हार दरबार से सानू भी थोड़ा सोच के गाना पैंदा। एक होर शब्द है राग सुर मल्हार विच

गुरु प्यारे सत्संग जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हुण साडे बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब सरबजीत सिंह जी रंगीला जी कुछ समय लिए कीर्तन की हाजरी भरनगे। साडे लिए बड़ी माण की गल है कि वह अज इत्थे स्पैशल तौर पर आया हैं ते मल्हार राग दे विच शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। आओ प्यार नाल कीर्तन सरवण करो जी। वाहेगुरु जी का

वाणी अब साथ से है। एक कुदरती समा बढ़िया है, नहीं तो मैं बड़ी दूर सा ते थक गए सा बड़े कीर्तन कर करके, तो मैं सोचा भी थोड़े दिन इन्हां बच्चियां को जाके आराम किया जाए। पर मैनू पता नहीं प्रोफेसर साहब ने कितों पता लग गया कि मैं इत्थे ही हाँ। इन्हां दे फोन ते फोन भी आओ, भावें थोड़े समय वास्ते आओ, जरूर आओ। और खुशी की गल सत्कारयोग भाई सरबजीत सिंह जी ये भी हाजिर ने, बड़ा मन प्रसन्न होया बच्चियां नूं स्टूडेंट्स नूं सुन के, आनंद ही आनंद बनिया पिया। ऐसी बरसात हो रही है, ऐसा मीह पै रहा है, ये मीह कदी पै जाए सही हिरदे रूपी धरती पे, ये मीह फिर सुकदा नहीं। सतसंगत बोलो श्री, मेरा ख्याल है बलार बहुत हो गया जो शब्द पढ़ लिया अपना, दूजा की आ गया थोड़ी तो।

0: लगातार दास एक जगह कब्जे च आ गया सी। घट्टो घट 6 महीने गया सा 2 हफ्ते वास्ते। उन्हें 6 महीने छड़े ही नहीं, कहते दरवाजा बंद कर देंगे, बाहरों ताला ला देंगे जे गए। बड़ी मुश्किल बेनतियां करके भी हूँ सानू आग्या दो, बहुत समा हो गया। बड़ी मुश्किल उतों आग्या लैके, तो फिर मैं क्या चलो सैक्रामेंटो चलते हैं थोड़ा आराम कर दें, तो दसना किसी ने भी नहीं। मैं उन्होंने कहा बिल्कुल खबर ना कर, गुरु ने पता नहीं आप जी ने दर्शन कराने सन, ये दास के भागें से साढ़े सत्कार योग। कितने साल हो गए प्रोफेसर साहब जी ने सू जो लुधियाने इन्हों की अकैडमी होंगी सी, दास सैकल लैके पहुँचता सी इन्हों को। फिर जो अकैडमी के सारे बच्चों सिख लैना चले जाना, फिर मैं घर जान लगना, तो इन्होंने कहना नहीं हाल जाना नहीं, हाल थोड़ा घूम फिर के आइए। फिर मैं सैकल के नाल नाल तुरिया जाना, तो प्रोफेसर साहब नाल नाल टली वजाई जानी। ये साड़ी जिंदगी रही है, लाइफ बीती है इन्हों के नाल, बख्शिश है इन्हों की। जे कुछ सानू गाउण दा तरीका आया कुछ, वैसे तो बहुत औखी औखी मंजिल है सत्संग, बड़ी औखी है। गुरु मेहर करन बड़ा वड्डा उपराला प्रोफेसर साहब इत्थे कर रहे हैं, सतगुरु इन्हों तंदुरुस्ती दे अरोगता लंबी उम्र बख्शे। फुल चुक दी शमा सारिया का धनवाद। फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का
1: खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही धनवादी हैं भाई सरबजीत सिंह रंगीला जी दे, समा बंद दिता थोड़े जे टाइम विच ही इन्हों का जो एक गायन स्टाइल है मल्हार राग नू बहुत ही उचाइया तक लै गया। तो वाहिगुरु होर मेहर करन बख्शिश करन, अच्छा जिहड़ी सेहत अच्छी बख्शन, इस तरह ही पंथ की सेवा करते रहन। तो हुण मैं बेनती करदा हाँ कि साडे बहुत ही सुरीले प्रोफेसर बलजीत सिंह जी सुरभी जो कि अजकल रिवर साइड रहिंदे हन, तो ये 35 मिनट लई कीर्तन की सेवा करनगे। प्रोफेसर बलजीत सिंह जी इन्हां दे उस्ताद प्रोफेसर जशपाल सिंह जी पंजाबी यूनिवर्सिटी, उन्हां को इन्हां काफ़ी साल तलीम लैंदे रहे रागां दी। ते उस बाद जलंधर लवली जिहड़ा इंस्टीट्यूट कॉलेज है उस विच भी कुछ देर पढ़ाते रहे। पिछले साल 31 राग दरबार से ना उसे भी इन्हें हाजिरी लगाई सी। इन्ह दे नाल संगत कर रहे हैं हारमोनियम ते मनजीव सिंह, वायलन ते साडे बेरिया दे ही सुखअमृतपाल सुखअमृत सिंह जोड़ी ते संगत कर रहे हैं, जुझार सिंह ते तौस ते संगत कर रहे हैं स्नेहाकार। आओ प्यार नाल कीर्तन सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूरन पुरख विधाता रहाओ। नानक प्रभ विनासी ताकी सेवना बिरती जासी अनद करह तेरे दासा जप पूरन हुई आसा। बिलावल महला पंजवा ताती भावना लग गई पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखदिया एकाली वलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब व्याध मिटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पय सहाई। सलोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तूण है छुट है निकट न जाई हो दूत। सलोक महला पंजवा मन मह चित हो चितवनी उद्यम करो उठनीत हर कीर्तन का आहारो हर देहो नानक के मीत। सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखिए करते का होए विचारो तित कर गाहो सोहेला सिवरियो सिरजनहारो। तुम गाहो मेरे निर्भव का सोहेला हवारी जित सोहेले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पाहो तेल देहो सज्जन असी सड़िया ज्यो हो वै साहिब स्यो मेल। कर कर हो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक सह देह आवन। राग आसा महला पहला छह कर छह गुर छह छह कर छह गुर छह उपदेश छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एक होवे सनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए रहाओ। विश्वे चसिया कड़िया पहरा थिति वारी महो होवा सूरज को रुतनेक नानक करते के वेस। राग तना

आई फुलंत ज्योति कैसी आरती होए भवखंडा तेरी आरती अनता सबदवा जंत पेरी राहो सहस तव नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त नना एक तोही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध हिव चलत मोही सब मह ज्योत ज्योत है सोए तिस दे चानन सब मह चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत इस पावे सो आरती होए हार चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंदिनो मोहे आही पियासा कृपा जल दे नानक सारंको होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महल्ला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडोत पुन वड्डा हे राहो साकत हर साधन जानिया तिनंतर हाउ मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चलह चुभ दुख पाव है जमकाल सह सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडा हे पुरख पाया अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम धार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे

धर्मे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल किवाड़।

सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसिए गुरु के दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए वाहे गुरु साहिब जी।

भक्त जना के मन विश्राम रहो। प्रभु के सिमरन गर्म नाम बसे, प्रभु के सिमरन दुख जम नसे, प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे, प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभु के सिमरन अंधन जागे, प्रभु के सिमरन पौ ना व्यापे, प्रभु के सिमरन दुख ना संतापे, प्रभु का सिमरन साध के संग सर्व निदान नानक हर रंग, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभु के सिमरन जप तप पूजा, प्रभु के सिमरन बिनसे दूजा, प्रभु के सिमरन तीर्थ इशनानी, प्रभु के सिमरन दरगे मानी, प्रभु के सिमरन होए सो भला, प्रभु के सिमरन सुफल फला, से सिमरे जिने आप सिमराए, नानक ताके लागू पाए, प्रभु का सिमरन सप्ते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरे मूचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सबके सुजे, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदमाए समाए, प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरे से तन बनते, प्रभु को सिमरे से पत बनते, प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिने आप दे आला, नान जन की मंगेर वाला, प्रभु को सिमरे से परे उपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख विहावे, प्रभु को सिमरे तिने आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तिने अंध कनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु के सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु के सिमरन कबून झूरे, प्रभु के सिमरन हर गुण बानी, प्रभु के सिमरन सहज समानी, प्रभु के सिमरन नेचले आसन, प्रभु के सिमरन कमल बेगासन, प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार, सुख सा सिमरन का अंत ना पार, सिमरे से जन जिनको प्रभु मैया, नानक तिन जन सरणी पया, हर सिमरन कर भगत प्रटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए, हर सिमरन पै सिद जति दाते, हर सिमरन नी जो चौ कुंट जाते, हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल कारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, ਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨਤ ਮਹਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਅਸ਼ਪਰੀ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਧ ਮੀਤਰਾ ਭਾਈ ਮਨੂ ਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਏ ਜੈ ਮਾਂ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੇ ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚਲੇ ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ

गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा को नान से अनु हर का नाम ते नाल पछानु जय मां भ्यान तप्त वो काम तै हर के नाम की तुमे उपर शाम जहां त्रिखा मन तुज करके तै नानक हर हर अमृत बरखे भगत जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात।

नानक जन कह वृत विवेक कह, हर का नाम जन को मुक्त युक्त, हर कह नाम जन को तृप्त भुक्त, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर के नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत किस नाए विजोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन के माल खजीना, हर तन जन को आप प्रभु दीना, हर हर जन कहे ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते, आठ पैर जन हर हर जपै, हर का भगत पर नहीं छपै, हर की भगत मुक्त भव करे, नानक जन संकेते तरे पार जाते, हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम, सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर दुख लता, नाम की महिमा संतृत बसे, संत प्रताप दुर्त सब नसे, संत का संग बड़ भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को, ए श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति पिखे सर्व टंडोल, पूजिस नाही हर हरे, नानक नाम मोल अष्टपदि, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत वख्यान, जोग व्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मदे फिरिया, अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राति, वर्त नेम करे वह पाती नहीं, तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरे चर जीवे, मां दात भी सर थीवे, अगन माए होम त प्राण, कनक सब है भूम दान, न्योली कर्म करे बवासन, जैन मार संजमित साधन,

मन कामना तीर्थ ते छुट्टे गर्भ गुमान मनते उठे सोच करे दिन सिर रात मन की मैल न तंते जात इस देही को बहु साधना करे मनते कहू न विखिया टरे जल धोवे बहु देह नीर शुद्ध गावे काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहु मूच बहुत सियाण जमका भोग आपे अनक जतन कर तृष्ण ना त्रापे भेख अनेक अगने बुझे कूट भाव दरगे निसजे शूर सनाई उपे आल मोह व्यापे माया जाल अवर करतूस अगली जमडाने गोविंद भजन बिन तिली माने हर का नाम जब तू दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सतगावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संगे होमे छोरे जे को जन्म मरण ते डरे

रतन त्या कोड़ी संग रचे सात छोड़ झूठ संग मचे जो शरणा सो अस्थिर कर माने जो होवन सो दूर प्राणे छोड़ जाए तिसका शर्म करे संग साई तिस पर हरे।

लोभ द्रोह व्याहु जुगत बयाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम तू ठाकर तुम पे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोय न जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत सरल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़ के लागे आन सुहाए नानक न सीजे बिन नावे पत जाए अशपरी दस वस्तु ले पाछे पावे एक बस्त कारण बिखोड़ गुआवे एक भी न दे दस बीहर ले तो मूड़ा को कां करे जिस ठाकर से ना ही चारा ताम को कीजे सद नमस्कार आ जाके मन लागा प्रभ मीठा सद सूखता हूं मन उठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगन साओ अपनी देरास खात पीत बरते अंध उलास अपनी अमान किशबा और साहले अग्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत या भी खोवे बोर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस्ते जागे राखे प्रभ की आज्ञा मन ने माथे उस

दर्शन भेट होत निहाल साधक संग कलूक तारे साधक संग नरक पर हरे साधक संग आवा सुहेला साध संग मिश्र तर मेला जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग न मिर्था जावे पार ब्रह्म साध रिद मसे नान गुदरे साध सुन रसे साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुंगाओ साध के संग न मंते विचरे साध संग सर पर निस्तरे साध के संग लगे प्रम मीठा साधु कह संकट कर डीठा साध संग पे आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नान साध पिटे संजोग साध की महिमा वेद न जाने जेता सुनी तेता वख्याने साध की उपमा ते गुणते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा व्यंत साध की शोभा ऊंचते ऊंची साध की शोभा मूचते मूची साध की शोभा साध बने आए नानक साध प्रभ भेद ना पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए आवर ना पेखे एक सबिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अश्वरी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल लेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोग जैसे सूर सर्व को सोग ब्रह्म ज्ञानी कह दिष्टमान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान

ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह वसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अम्बुत त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता, ब्रह्म ज्ञानी के हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का वट प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस वट भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोज जहे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए दाख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन मखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सत जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी उपर हाथ,

अपने रंग सब ते दूर सब के संग बूझे दिखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक मरे नाम से आवे ना जाए नानन सदी रहा समाए आप उपदेशे समझे आप आपे रचा सबके साथ आप कीनो अपन विस्तार सब किस उसका हो करने यार उसे पिन कहो किस होए तन तरंतर एक कैसो अपने चलते आप करने यार कौतक करे रंग पार मन में अब मन अपने माए नान कीमत कहन जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने मखियानी सच सच सत सब कीना कोट मदे किन विरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर या पार नूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कर कर सुनी सरम मखियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक संत सन जो जन परे सो जने उदरनार संत के निंदा नानका बहर बहर अवतार अष्टपदी संत के दुखन यार जा कटे संत के दुखन जमते नहीं छुटे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन सोभा ते हीन संत के हते को रखे ना कोए संत के दुखन थान पृष्ठ होए संत कृपाल कृपा जे करे नान संत संग निंदक भीतरे संत के दुखन ते मुख पवे संतन के दुखन कागज लवे संतन के दुखन सर्ब जोन पाए संत के दुखन त्रिग जोन क्रमाए संतन के दुखन तृष्णा में जले संत के दुखन सब कुशले संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीच निचाए संत दुखी का थाव को नाए नान संत पावे ताई भी गत पाए संत का निंदक मात आए संत का निंदक खिंटक न पाए संत का निंदक मात यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राजते हीन संत का निंदक दुखी यार दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सब योग संत के निंदा दोख में दोख नानक संत भावे ता उसका भी होए मोक संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसे का निमित्त संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी मांकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरे संत के दुख न सुखते डरे संत के दुखी को नाई ठाओ नान संत भावे ता ले मिलाए संत का दुखी अद बीजते टूटे संत का दुखी किते काज ना पहुंचे संत के दुखी को ध्यान भरमाइए संत का दुखी अवजड़ पाइए संत का दुखी अंतर दे थो था ज्यो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ कृष्णाए अपन बीज आपे ही खाए संत के दुखी को अपना रखना नान संत भावे ता ले उबार संत का दुखी ओम बिलाए ज्यो जल बिहून मछली तरपराए संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यो पाव की तन नहीं त्रापे संत का दुखी छुटे अकेला ज्यो बुआड़ तिलखेत माए दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिथिया कैद किरत निंदका तुरी पया नान ज्यो तिज पावे सोई थे आ संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जीवाये संत के दुखी की पूजे ना आसा संत का दुखी उठ चले निरासा संत के दुख न दृष्टे कोए जैसा भावे तैसा कोई होए पया किरत न मिटे कोए नानक जाने साचा सोए सब कर तिसके वो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तत करो दिन रात तिसे त्यावो सास ग्रास साब किस वर्ते तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनों कृपा करे तिसा पुन नाम देव बड़पागी नान जन से

नाथ। तिसका हुकम बूझ सुख होए, तिसका नाम राख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर पव सोए, नानक बिघन न लागे कोए, उस्तत मन में करनंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार।

जो किस करे सो प्रभ के रंग सदास्ताप से हर संग सह सुभायो विसो होए करने आर पछाने सोए प्रभ का किया जन्मी ठिलगाना जैसा सात है सात अष्टाना जिसते उपजे तिसमाय समाये हो सुख निधान ऊनू बनयाए आप उसको आप दीनो मान नान प्रभ जन एको जान श्लोक सर्वकला भरपूर प्रभ बिरथा जन हार जाके सिमरन उदरिय नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गण हार कपाल सब्जियां आपे प्रतपाल सगल की चिंता मन माए तिसते बिरथा कोई नाए रे मन मेरे सदार जाप आवनासी प्रव्यापे आप आपन किया कछु न होए जिसो प्राणी लोचे कोए तिसमें ना

जिन सच कर जाता नान सो जन सच सुमता। शलोक रूप ना रेख ना रंग के चित्रा गुणते प्रपिंत से बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न अस्पदी। अवनासी प्रमन में राग मानु की तू प्रीत आग तिस्ते परे ना किस कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गीर सुजाना।

के संग ना लेप, मन में रखे हर हर एक अंधकार, दीप प्रगासे नान परम मोह दुख दाते, नासे तब तुम्हारे ठाण भरताए, अंध पे आदुख नाठे पाए, जन मन के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेशे, पाओ चुका निर्भव हुए बसे सकल व्याध मंते कह न से, इसका साधन कृपा तारी साध संग जब नाम मुरारी, तिपा चुके परम गमन सुन नानक हर हर जस सरवण, निर्गुण आप सरगुण भी होई, कला तार जिन सगली मोई, अपने चरित प्रव्याप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए, ओत बोध रव्या रूप रंग पै प्रकाश कह संग, रचना अपनी गलतारी, अनकबार नंग बलिहारी, श्लोक साथ ना चाले बिन भजन मिख्या सगली चार,

चरण कमल राखो मन माए जन्म जन्म के किल बिख जाए। आप जपो अबरा नाम जपाओ संत गायत रहत गद पाओ सार भूत सदर को नाओ सह सुभाए नानु गुन गाओ। गुण गाव तेरी उतरस महल बिन सजाए हमे बिग पहल होए चंद बसे सुकुनाल सास ग्रास नाम समाल छाड़ सियाण सगली मना साध संग पावे सतना। हर पूंजी संच करो व्यवहार इया सुख दरगह जयकार सर निरंतर एको देह को नान जाके मस्तक लेख एको जप एको सलाए एक सिमर एको मन आए। एक सके गुण गाओ अनंत मंत्र जाप एक भगवंत एको एक करा पूर्ण पूर्यो प्रभ्या मन विस्तार एक ते पै एक रात प्रास्त गए मंत्र अंतर एक प्रवरता गुरु प्रसाद नानक एक जाता।

परीन जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार मेर श्रद्धा पूर सा प्रभ के गुण गावो सास प्रभ तुम्हें त्यावो चान कमल से लागे प्रीत भक्त करो प्रभ की नित नीत एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दिष्ट मांस कोए आरस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जनता ने पूर्ण पुरख ने डोला ने सुर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध कह संग परे शान सब त्याग अंतर प्रकाश अन्दिन लिवलाग बड़पा की जपया प्रसोए नानक नाम रते सकोए

बंधन काट मुक्त जन भया जन मरण दुख परम गया इस पुनी श्रद्धा सब पूरी अरावरे सत्संग हजूरी जिसका साधन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाये सो क्यों विसरे जे काल न पाने सो क्यों विसरे जे किया जाने सो क्यों विसरे जिन सब कुछ दिया सो क्यों विसरे जे जीवन जिया जी

Господин, जब आकारे कृष्णा निश्चेता पापुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समा तब बैर विरोध के संकमात जब उसका वर्ण चेन्ना जाप तब हर शोक से व्याप्त

जाके मन लागा रंग। जय जय शब्द नाद बाजे सुन सुन आनंद करे प्रभु जय पर टेक बाल महात के माते नानक गुदरे तिनके साथे संजोग सुन सुन नहीं आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए।

कुमार कमण सरते महा कमण जतो आकार वेल ना पाया पंडित जय होवे लेख पुराण।

नमो सर्वान्य समस्ति निदाने नमो देव देवे भेखी भेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वभौणे नंगे नाते नसंगी प्रमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चन चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे नंगी नामे समस्ति स्वरूपे परवंगी परमाते समस्ति विपूते कलंक बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज रेश्रम परम रूपे नमो जोग जवेश्रम परम सिद्धे नमो राज रेश्रम परम बिरदे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो रूप माता पेखी परमी भोगी भुगते नमो जोग जवेश्रम परम जुगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत परे देव धर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो शाह नमो भू भूपे नमो दान दान नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्त शिनान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सचिदानंद सर्व प्रणासी नूपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बिरद करता अदोद अर्धं अगं ओघर्ता परम परम परमेश्वर पुष्पालं सदा सर्वदा सिंदाता दयालं शेदी पेदी नाम काम समस्त उपराजी समस्त सतधाम तेरा जोर चाचरी छंद

समस्त उपराज सदा सर्व सहज समस्त सलाम है स्थिर काम निर्बाध स्वरूप अगाध अनूप वो अंगाध रूपे नाद स्वरूप अनंगी नाम त्रभंगी त्रकाम त्रिभंग त्रबाध्य गंजे अगाध्य सुभंग सर्वभाग्य सुसर्व अनुराग्य त्रिपुक्त स्वरूप है शुच है श्युत है के नरक प्रणास है पृथ्वी और प्रवास है नुक्त प्रवाह है स्थिर सदा है बेपुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुरूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है चाचरी छंद

नमस्तल प्रणाम समस्तल प्रणाश अगंजल नाम समस्तल निवास निकाम विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्म प्रणाशी सुधर्म विभूते सदा सचिदानंद सतरम प्रणाशी क्रीमल कुंदा समस्तल निवासी निवासी अजाय विभूते गजाय गनी में हरियंकरी में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भक्त स्वम स्वं सर्वदा सर्वयुक्ते दुकाल प्रणासी दयाल स्वरूपे।

काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए सज्जीव अवतरा, काल पाए कर्म सन प्रकाशा, सगल काल काकिया तमाशा, जमन काल जोगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार रहता है हमारा।

साहिब क्या नाही कर तेरे करदा तेरे सब कुछ जिसते सो पावे सदा से सलाह तेरी नाम मनु सावे नाम जिनके मनु सेवा जे शब्द कनेरे कहे ना सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे सचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गुआईया कर शान सुख मनाए उसे जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किया गुरु बिटन जी दियां वडियाईया कहे नान सुनो संतो सब दरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख हुआ तित घर आनंद वाजे साची लिवे बिंदे निमाणी देह निमाणी लिवे वाजो क्या करे विचारिया तुद बात समृत कोई नाई कृपा कर बनवारिया

नाम साया गुर प्रसादी हरमन मसिया पूर्व लिखिया पाया कहे नानके श्री प्रमाण हो आजन सतगुर सिंह चितलाया ए नेत्रो मेरे और तुम्हें जो तरी हर बिन अवन देखो कोई हर बिन अवन देखो कोई नदरी हल

पौड़ी सतगुरु बेटो वारे जित मिले कसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दे लगे डुबे सवन जा रहा सतगुरु है बहुत विरला के नचारिया कर कृपा पार उतारे कर कृपा पार उतारे।

अंतरजामी है, उहदा नाम जपो भाई। वाहिगुरु वाहिगुरु करिया करो, सतनाम सतनाम करिया करो। रहाओ विश्राम दे के महाराज साहब जी बख्शिश कर दे अगे।

क्योंकि संत समूह अनेक मती के अनेक तरह के सुभा होंगे संतां महापुरशां दे भी इंसानां दे भी रब दे प्यारियां दे कोई बहुत सेंसिटिव हुंदा किसी नूं फर्क कोई नहीं पैंदा ते कहिंदे जदों दुनिया भावें जो मर्जी कहिंदी रहे जदों महाराज दे अगे गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे आके खलोना ना बस सिख दा सिर जिहड़ा शर्म नाल नहीं झुकना चाहिए आखो सतनाम गुरु दे अदब च झुकना चाहिए जिन्ना चिर गुरु दे अदब च सीस झुक रहा साडा सानू महाराज दे अगे आउण लगिया शर्म नहीं आ रही समझ लो साची पूर्ण निर्मल रीत साडी मर्यादा भी सच्ची है साडा अंदरला भी सच्चा निर्मल है सब कुछ ठीक है क्योंकि जिहदा सब कुछ ठीक होवे ओही अदब सहित आके झुक सकदा है नहीं जदों बंदा अपनी ही नजरां च डिग जे उन्हें गुरु दी नजरां च की खलोना है

साहब जी नानक मांगे संतर वाला। हे महाराज मेरे ते भी कृपा करो, मैनू भी अपने संतान दे चरणां दी धूड़ी बख्श दिओ। आखो सतनाम श्री भाई। जिहड़े महाराज तुहाडे प्यारे ने, तुहाडे दर तो बख्शे होए ने संत लोग, उन्हां दे चरणां दा प्रेम महाराज सानू बख्श दिओ।

असंख जप, असंख पाओ, असंख पूजा, असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह है उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचारे, असंख सती, असंख दातारे, असंख सूर मोह

असंख नावे असंख तावे अगम अगम असंख लो असंख कह है सिर पार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा

ना सो है। पाताल पाताल लख आगासा आगास उड़ कूड़ पाल थके विद कहन एक वात सहस 18 कहन कते बायस लोई कतात।

अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारिये अमुल भंडार अमुल आवे है अमुल ले जाए अमुल पाए।

जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती दी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई आय जिह डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै कर नौने दे आवे ताहे सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी नारदा ध्यान धरके बोलना जी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ओ आप जी दे हजूर अरदास बेनती है आप जी ने कृपा रहमत की है इस वेले श्री अखंड पाठ साहिब की संपूर्णता परंत आप जी दे पावन स्वरूप दे सुख आसना की सेवा हुई है चौपी साहब का जाप होया बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुल चुक की खिमा बख्शना आप जिया दे पावन सवारा साहब सचखंड विखे जा रहे हैं चाले पाउ की आग्या बख्शो रस्ते विच बात करदे साई हुणा नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी बोले सो निहाल सत नाम वाह।

कि जिहड़ा धर्म है भाई वह दया का पुत है, ते जिस हिरदे च दया नहीं ना वो हिरदे च धर्म कदे हो नहीं सकता। जिथे दया होएगी

गुरु प्यारी सवारी साध संगत जीओ, आप बड़ भागे हो जो सतगुरु जी ने बख्शिश करके अपनी गोद विच बैठन दा इस भाग समा सानू सबना नू बख्शिश किया है। आओ सारे रल के अपना सतगुरु जी दे जस नू सुनीए गावीए तां जो ये समा जो सानू गुरु चरणा च नसीब होया है सफला हो सके। सब दे चरणा च बेनती है जिथे आप जी ने बाणी नू श्रवणा दे नाल सुनना है, नैणा दे नाल आप बाणी नू पढ़ रहे हो स्क्रीन दे उपर ते नाल नाल रसना नू पवित्र करन दा यतन करिए, नाल नाल बाणी नू गाउन दा यतन करिए, गुरु दी खुशी दे पात्र बणीए। सतगुरु जी दा बचन है पट साहिबान जी दा कि जो एक बार अपनी जुबान तो धन गुरु रामदास महाराज का नाम लैंदा है, गुरु नू चेते करता है तो उन्हू की प्राप्तियां होंदियां ने। वह प्राप्तियां होंदियां ने जिहड़ियां बहुत मुशक्कत दे नाल भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता। की कहिंदे ने पट साहिबान, जिहे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे थिन। जिहड़ा साडा अग्ञानता का अनेरा है वह खत्म होंदा है किदे नाल, धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी नू ध्यान दे नाल। आखो सतनाम, जिहे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन। जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन, हिरदे दे विच नाम दा वासा हुंदा है की करन दे नाल, धन धन श्री गुरु रामदास महाराज दा नाम लैन दे नाल। जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, तपदे हो हिरदयां दे विच ठंड पैंदी है किस तरह, धन गुरु रामदास महाराज कहन नाल। जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावे, ओ रिधियां सिद्धियां ओ ताकतां ओ बरकतां जो जोगी लोग तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर सकते, धन गुरु रामदास महाराज के चरणों का ध्यान करके असी प्राप्त कर सकते। आखो सतनाम। फिर अगे कहिंदे, ऐसे दीन दयाल सतगुरु नूं जिस तो इतनियां प्राप्तियां होंदियां ने फिर की करना चाहिए है। जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटैखिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन, जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावे, सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन। संगत विच आपां बैठे हाँ, गुरु ने बख्शिश कीती है ते गुरु नूं धन धन कहिए। मिल संगत धन धन करो, जे सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो नरो। जिस वाहिगुरु नूं धन गुरु रामदास महाराज के चरणों का ध्यान करके गुरु गुरु करके धन गुरु रामदास महाराज का नाम जप के परमात्मा की प्राप्ति होंदी है। तो आओ सारे फिर रल के अपना सारे आखिए धन धन श्री गुरु रामदास। सारे एक रसना पवित्र करो, सारे आखो जी धन धन श्री गुरु, धन धन श्री गुरु रामदास। आओ सारे रल के अपना इस पावन शब्द न जुड़िए। अग अंतक बदे ना सल कव गुर रामदास तेरी शरण, धन गुरु रामदास महाराज जी ताड़ी शरण दे विच आ करके इन्ना आनंद है इन्ना सुख है कि जन्मां जन्मांतरां दे पाप कलेश दुख दरिद्र सारे दूर हो जाते हैं। आओ सारे रल के अपना इस पावन शरण जुड़िए।

कृपा करनी जी, आपने सब दियां झोलियां भरनिया, सब दियां गुरमत अनुसार मनोकामना पूरियां करनिया, जेलां विच बंद गुरसिखां दी रिहाई चढ़दी कला करनी, अपने प्यारे खालसा पंथ की चढ़दी कला करनी, इस वेले